0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मध्यम लहरी 378.78 मीटर्स अर्थात 792 किलो हर्ट्सवर तसंच न्यूज ऑन AIR या ॲपवर आकाशवाणीचं हे पुणे केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 आणि 15 सेकंद झालेली आहेत। प्रसारित करतोय प्रभात वंदन हा मराठी भक्तिसंगीत आणि चिंतनाचा कार्यक्रम।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार

0: अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीख।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले

0: चार से पांच दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मॉनसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2-3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act 2020,

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओ, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण।

0: दीजिए
1: जी। इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद, और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों से पानी भर गया, सारी
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
5: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
3: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
5: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
4: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने

0: रहने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, अरे मेरा भाई क्या देख रहा काट।
2: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
3: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस्ते क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
5: और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
6: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
8: अरे पशु पक्षी हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
9: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
6: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
9: फसल बह गई।
8: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
9: सारे
8: सामान जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
9: चलो जल्दी ऊपर,
8: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
9: चलो चलो,
8: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
9: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।

0: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया। लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोकगीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।

0: चाची मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची
1: हाँ।
0: यहाँ आकर तो देखो
1: हाँ।
0: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के
1: हाँ।
0: सबको यहीं पे बुला लो चाची
1: हाँ।
0: सात आठ छत्ते तो होंगे ही
2: हाँ। अरे ओ रेवती
0: अरे सुनो तो श्यामा
3: हाँ चाची
0: किंदौरी
3: हाँ चाची
0: और
4: हाय हाय ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ
2: हाँ प्रसन्नी
4: अरे सब इधर आओ जरा सुनो तो ये गौरा क्या कह रही है
3: आ रही हूँ चाची
1: हाँ चाची
5: क्या है चाची
4: अरे
5: क्या हुआ
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री
5: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है
5: हाँ?
4: कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं
5: हाँ? छत्ते क्या मतलब
4: हाँ हाँ छत्ते वो भी दो तीन नहीं बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं हाँ
5: सात आठ छत्ते कमाल है
3: अरे फिर तो मजा आ गया
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद अब तक कहीं नहीं मिला और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं
6: हाँ, क्यों नहीं शहद निकालने के बाद दांतों से तोड़ लेंगे
7: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं
5: हाँ, ठीक है ना
0: चल चलते हैं

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं।